लेकी जली रोतन सगे सगे सगे सगे दिन से नुये कपूर सुई गम्मे इलाफ़ना ले जे निंते लपले क्रमों